0: CIS
1: V&V Dental Clinic Ghorahi 15 Dan.
2: मेलाडियो मायुका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योनी मस्तक जरुरी सूचना जुमो बेला खिमरिदे गरम अवधि जेउ बेला सुनो थोरी गदास अचुरुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्तक सम्भावना ताई आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र संक्षिप्त जस खिमनादे वातावरण मिले नेला खेपा असर केने रि उमुल र थङने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तक तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामले ल मे लागिने सज जिमी गिमे लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिंदगी को ठेल मेला की नाटी जन धनी में खेपा छेपी ताऊ दुओ होकाई
3: विश्व छालियाला बोलना मेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा ले सांसे खेल गिरी
2: वन जंगल सर मेरा आई मेरी बानी एम एल एम ओ सोचा मेला ली उसको तो पत्र राले पार दोगे रहते ही
3: सलाई लाइटर सियाला मैं सचाने चीज राले जबांगजा रो यामा देने पोलो जिने या इतने चीज रा रही थी वन जंगल यार क्या बाबा या
2: पिकनिक वन बोस बाको मैं सचान सो छिन्नी मेले चाव सो सही देगी खिनाई वन जंगल ओ सो छामी दे के बारी को चुरो विधि ओरे बने खुबा जिंदगी ना छिन्नी
3: नंथा नामलो लीजियो वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी होनी ढालने से अनुगमन दिने व्यवस्था चाव सो गिरी है
2: गेसो छामे ला खोरे ला चाव सी कोरी है होगी दे तो इनका एक गेसो मे के लाई जो आप और नई जिले बने गेम ये लो गेसो मे के नाला ये ओलिम नयो के नाई ये
3: वन जंगल से जुड़ी सी गेम बारी लो बाली नाली कुचिला चिली यात्रा में सतान सो चिली ने चाव सो सही रे के खेले है
2: वन जंगल मे ला की के नाई ये मे वाला जी की नी पार तो ना खरना ना रे मिली दे बने सानो जो मे के सही
3: बता सो चिली जो बेला तो जिजिम के कोटल मे की सतान की ने ये नो चिम चिली ने चाव सो के सही है
2: मे ला की ने निताई गेम वाले के बच्चे सुनो और ले मने के बच्चे या
3: किस चाम ला पोया ला मे ला की उगी संकीनी गीत सका उड़ा कारे ले परहरी कारे ले सर सुनसरी गांव पालिका गांव कार्य पालिका ये उन्हीं कार्य ले लो खबर की दी है
2: अनुरोध सुनसरी गांव पालिका वन वातावरण सजा विपद व्यवस्थापन समिति कोबांग रोलपा
4: मानसिक स्वास्थ्य समस्या का लक्षण हरू
5: डर लाग्नु निद्रा नलाग्नु
4: अनौठा विचार आउनु
5: निराशा बढ्नु खुशी नहुनु
4: कुनै कुरामा दुविधा हुनु वा झुक्किनु
5: धेरै रिसाउनु वा अरूलाई कुटपिट गर्नु
4: दैनिक कार्यहरू पूरा गर्न नसक्नु
5: छटपटी हुनु चिटचिट पसिना आउनु
4: मर्ने सोच आउनु वा मर्ने प्रयास गर्नु
5: एकोहोरो हुनु तथा एक्लै हुन मन पराउनु
4: खानामा रुचि नहुनु एउटै कुरा दोहोर्याइरहनु मानसिक स्वास्थ्यका समस्या वा लक्षण हुन्
5: त्यस्ता लक्षण देखिए तत्काल चिकित्सकसँग परामर्श गरौं बिरामीलाई हौसला बढाऊ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोगले व्यक्तिमा एक्लोपन परिवारमा अविश्वास र कलहका साथै समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ
5: गलत एवं भ्रमपूर्ण सामग्रीका साथै अश्लील र नकारात्मक सामग्री पोस्ट र सेयर नगरौं
4: सामाजिक सञ्जाललाई नयाँ प्रविधि र विषयवस्तुको जानकारी लिने तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने माध्यमको रूपमा सदुपयोग गरौं
5: अरूको अश्लील फोटो तथा भिडियो खिचेर अपलोड गर्ने द्वन्द बढाउने हिंसा फैलाउने र चरित्र हत्या गर्ने सामग्रीहरू नराखौं
4: अरूलाई होच्याउने निज देखाउने तथा तथ्य बङ्गाई चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कार्य दण्डनीय हुन्छ
5: यस्ता कार्य गर्नेलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार साइबर अपराधमा कानूनी कार्यवाही हुन्छ
4: सचेत बनाऊ
5: सामाजिक सञ्जाललाई सद्भाव सकारात्मक विचार र प्रेरणा फैलाउने माध्यम बनाऊ
4: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड

समुदाय को लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ज। जलजला ट्रायल चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 4 बज्यो।

त्रैथा इंद्र रनेरह देखुन रैथा सलै जू देखे थे सपना सलै जू देखे थे सपना उबलनी खोला हो पागिरो गोयो उबलनी खोला हो पागिरो गोयो सलै जू।

0: जलजला टाइम चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बेलुकीको 5 बज्यो।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्रणाली दिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।
2: के तपाईँलाई गर्दन वा कम्बरमा नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, एलर्जी, छाला रोगका समस्या, पुराना रुगाखोकी, सन्सिलाइटिस